सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछाने, कट कट के पट पट की जाने, जब उदकर्ख करा कर तारा, प्रजा तरत तब देह अपारा।

दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेच करो रण काता। जी अस तुझ तब सरनी परे, तिन के दुष्ट दुखित वह मरे।

0: संसार नूं भी कह दिता कि भाई लहणा जी हुण गुरु अंगद साहब जी है यही इस गद्दी दे वारस होणगे इन्हां दे कोलों तुसीं साडे जे कोलों जिवें अगवाई लैंदे सो इदां अगवाई हुण गुरु अंगद साहब जी को लैणी है। फिर नाल ही कह दिता गुरु अंगद साहब जी नूं कि हुण तुसीं खडूर दी धरती ते जा के प्रचार करना है। ते कुछ समय बाद कुछ दिनां बाद अज दे दिन गुरु नानक साहब जी महाराज जी 1549 ईस्वी नूं करतारपुर साहब की धरती ते ज्योति जोत समाए सन। उन्हां दा ज्योति जोत पुरब अज बड़ी श्रद्धा भावना दे नाल हर साल की तरह गुरु नानक नाम लेवा संगत संसार दे विच कोने कोने विच मना रही है। ते भाई गुरदास जी भी यह गल कहिंदे ने धन गुरु गुरसिख धन। हुण गुरु नानक साहब जी भी धन ने ते भाई लहणा जी भी धन ने जिन्हां नूं गुरु नानक साहब जी ने आदि पुरख आदेश कराया जिन्हां ने परमात्मा नूं मिला दिता जिस परमात्मा की भाल विच भाई लहणा जी कई साल जिहड़े पहाड़ां विच जांदे रहे ना परमात्मा नाल नहीं मिले पर जदों धन गुरु नानक साहब जी की शरण विच चले गए आदि पुरख आदेश कराया फिर परमात्मा नूं मत्था टेकन की जाच परमात्मा दे दीदार करन की जाच गुरु नानक साहब जी ने भाई लहणा जी नूं दस दित्ती। फिर सतगुरु सतगुर दर्शन धन है धन दृष्ट गुर ध्यान तराया कहन लगे कि इस गुरु के दर्शन भी धन ने ते वह दृष्टि भी धन है जिन्हां जिस दृष्टि ने जिन्हां अखां ने गुरु के दीदार किए। आपां जदों बचन पढ़ते ना दर्शन देख जीवां गुर तेरा पूर्ण कर्म होए प्रभ मेरा। सतगुरु जी जदों मैं तुहाडी दीदार करदा है तो मैनू आत्मक जीवन मिलता है। हुण भाई लहणा जी नूं भी आत्मक जीवन मिल गया तो फिर जदों गुरु दे दीदार हो गए ना तो यह कह दिता गुरु बन के जिस प्यारे सिहोने ते सियागै मर चलीऐ त्रिग जीवन संसार ताकै पाछै जीवना। कहिंदे हुण गुरु तो बिना मालक प्यारे तो बिना जीविया नहीं जाता जे उहदे तो परे जा के जीवांगे तो वह मरण के बराबर आ फटकार योग जीवन आ जिहड़ा हुण गुरु तो परे जा के बतीत होवे। उत्थे फिर इको ही गल कह दिती भी हुण प्यारे दे नाल नेह पै गया है ते सत भाई गुरदास जी भी कहिंदे कि वह सतगुरु के दर्शन भी धन ने ते वह नेत्र भी वह दृष्टि भी धन है जिहड़ी दृष्टि सतगुरु के दीदार करती है जिहड़े अखां दीदार करदियां ने उस मालक दियां उस परवदगार की जोत गुरु नानक साहब जी की। फिर अगे भाई गुरदास जी दसदे धन धन सतगुर शब्द धन सुरत गुर ज्ञान सुनाया कि सतगुरु का वो शब्द भी धन है ते वो सुरत भी धन है जिहड़ी उस शब्द नूं सुनदी है। जिवें आपां बचन सांझे कीते साखी दे कि सतगुरु जी दे बचन भाई जोध जी खडूर की धरती ते पढ़दे पए ने ते भाई लहणा जी की सुरत ने वह सुन ले ने। हुण देखो भाई जोध जी जदों रोजाना बाणी पढ़ते ने होर भी ते नगर के लोग सुनते ही होणगे पर वह लाहा नहीं प्राप्त कर सके पर वह मुबारक सुरत सी भाई लहणा जी की जिस सुरत ने भाई जोध जी दे कोलों गुरु शब्द सुनिया ते उधार हो गया। अगे जो होर बरकतां गुरु दे विच ने ते उन्हां दे बरकतां दे मालक जिवें गुरु सिख उन्हां बरकतां नूं धारण करके धनता दे योग हुंदे ने ये विचारां कल नूं इस तों अगलेरियां जिहड़ियां आप जी दे नाल सांझियां करन दा यतन कीता जाएगा जी। इन्नियां विचारां प्रवान करनियां बोलदिआं विचार करदिआं बाणी दे शब्दां दा गायन करदिआं एक नहीं अनेकां ही भुल्लां गलतियां हो जांदियां ने। गुरु साहिब गुरु की संगत बख्शनहार है बख्श लैणा जी सतगुरु जी कृपा करना उस संसार का भला मंगते हुए उच्चारण करो जी। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब भाई खजान सिंह जी श्री अमृतसर साहब वाले जो कि गुरमुख विचारां दी साज अज दा पावन इतिहास अते भाई गुरदास जी दियां वारां दी कथा आप जी नूं सरवण करा रहे सन। भाई साहब जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आओ पावन बाणी दे शब्द कीर्तन ਸਰਵਣ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੁਦਰਪੁਰ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਪਰੰਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੰਠ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਣ। ਆਓ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੁਦਰਪੁਰ ਵਾਲੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

जन्म बिछुरे थे माधव, ये जन्म तुम्हारे लिखे, कह रविदास आस लग जीवो चिर पहयो दर्शना देखे।

स्वस्थात बाणी ब्रह्माहो सत सुहान सदा मन चाहो कवन सुवेला वक्त कवन कवन थित कवन वार कवन सिर उत्ते माह कवन जित हुआ आकार वेल न पाया पंडती जी हो वह लेख पुराण वक्त न पायो का दिया जे लिखन लेख पुराण थितवार ना जोगी जाने रुत माह ना कोई जा करता सिठी कौ साजे आपे जाने सोई किव कराका किव सलाही क्यों वरनी किव जाना नानका खण सब को आख एक दो एक सियाणा वड्डा साहिब वड्डी नाई कीता जाका होए नानक जे को आपो जाने अगै गया न सोहै पौ तल न पाताल लख अगासा अगा सूट कूट भाल थके वीत कैनक वाह सह सठार कैनक ते बास लू एक धात लिखा हुए त लिखिया लिखा हुए विनाश नानक वड्डा आखिए आपे जाने आप साला ही साला हे तिसुट न पाइया नदियां ते वाह पवह समुंद न जानिए समुंद साह सुल्तान गृह सेती माल तन कीड़ी तुलना होवनी जेत समन होना विसरह अंत न सिफती कहने अंत अंत न करने देने अंत अंत न वेखण सुन न अंत

तंत्रं नमो यंत्र यंत्र नमो एष्टे एष्टे नमो तंत्र तंत्रं सदा सचदानं सर्व प्रणाशी अनुपे अरूपे समस्त निवासी सदा सिद्धा बुद्धा वृद्ध कर्ता अदु उर्द अर्दं अगं ओग हर्ता परम परम परमेश्वरं पुरुष पारं सदा सर्वदा सिद्धदाता दयाल अशेदीय भेदीय नाम अकाम समस्त पराजी समस्त सताम तिराजोर चाचरी छंद जले हैं थले हैं अपीत है अभे हैं प्रभु है अजू है आदेश है अपेस है भुजंग प्रयात छंद अगाध्य अबाध्य आनंदी स्वरूप नमो सर्वमान्य समस्ते निदाने नमस्त्वं नयनाथे नमस्त्वं परमाथे नमस्त्वं अगंजे नमस्त्वं अपंजे नमस्त्वं अकाले नमस्त्वं अपाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राजराजे नमो साजे नमो साहसाहे नमो महमाहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोग रोखे नमो शोक शोके नमो सर्व रोगे नमो सर्वभोगे नमो सर्वजीत नमो सर्वपीत नमो सर्वज्ञान नमो परमतानं नमो सर्वमंत्रं नमो सर्वजंत्रं नमो सर्वदृश्यं नमो सर्वकृत्सं नमो सर्वरंगी त्रिभंगी अनंगी नमो जीव जीव नमो बीज बीजय खिजय अभिजय समस्तं प्रसिद्धि कृपालं स्वरूपे कुकर्मं प्रणाशं सदा सर्वदा सिद्धं निवासी चरपट शांत प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अकल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अकल धर्मं अलख कर्मं सर्वं दाता सर्वं ज्ञाता सर्वं भाने सर्वं माने सर्वं प्राण सर्वं त्राण सर्वं भुक्ता सर्वं न्योता सर्वं देवं सर्वं पेवं सर्वं काले सर्वं पाले रुवाल चंत्वै प्रसाद आद रूप अनाद मूर्ता जीवन पुरखा पार सर्व मंत्र मान देव पेवे आदोदार सर्व पालक सर्व कालक सर्व को पुन काल जत्र तत्र विराज ही अवधूत रूप रिसाल नाम ठाम न जात जाकर रूप रंग नर एक आद पुरख उदार मूर्त अजोन आदस एक दे सावर न पेश जाकर रूप रेख न राग जत्र तत्र दशा विशा हो फैल्यो अनुराग नाम काम विहीन पेखत ताम हू नह जा सर्व मन सर्वत्र मन सदैव मन तथा एक मूर्त अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेल अखेल खेलने अंत को फिर एक दे भेव न जा नहीं जे भेद और कते रूप रंग न जात पात सो जाने के जेब तात मात न जात जाकर जन्म मन विहीन चक्र बक्र फिरे

निर्भय निकाम मद्भुत प्रचंड मितगत अखंड अलिस्य कर्म अदृश्य धर्म सर्व पुंडा ढंडन बढ़िया चाचरी छंद त्वय प्रसाद गोविंदे मुकुंदे उदारी अपारी हरि अंकर नरे नामिया काम भुजंग प्रयात छंद चत्र चक्र करता चत्र चक्र हरता चत्र चक्र दाने चत्र चक्र जाने चत्र चक्र वर्ती चत्र चक्र परती चत्र चक्र पाले चत्र चक्र काले चत्र चक्र पासे चत्र चक्र वासे चत्र चक्र मानिए चत्र चक्र दानिए चाचरी शांद न सत्रय न मित्रय न परम न पित्रय न कर्म न काय अजन्म अजाय न चित्रय न मित्रय परे है पवित्र प्रथिसया दिशया दृश्या कृशय भगवती शन्त्वय प्रसाद कहते कि आशिज दिश कि आपिज पिस कि आगंज कर्म कि आपन पर मैं कि आपिज लोक है कि आदित्य सुख है कि अवधूत भरने के विभूत करने के राजन प्रवाह है कि धर्म तो जाह कि आशोक भरने के सर्वा भरने के जग पंकृति है कि शत्रंग क्षत्रिय है कि ब्रह्म स्वरूप है

कि जा हर जहूर है कि हाजर हजूर है हम यसलो सलाम है समस्तुल कलाम है कि साहिब दिमाग है कि उस नल चिराग का के कामल करीम है कि राज करीम है कि रोजी देहांद है कि राज करेंद है करीमुल कमाल है कि उसनुल जमाल है गनीमुल खिराज है गरीबुल निवाज है हरीफुल सिकन है हिरासुल फिकन है कलंकम परनास है समस्त निवास है अगंजुल गनीम है रजाए रहीम है समस्त जुबा है कि साहिब की राह है कि नरकम प्रणास है बहिस्तुल निवास है कि सरभुर्गवन है हमेशुल रवन है तमामुल तमीज है समस्तुल अजीज है परम परमेश समस्तुल अदीस है अदेसुल अलेख है हमेशुल अपेख है जमीनुल जमा है आमी कुल अमा इमा है अंकरीमुल कमाल है कजूरत जमाल है कि अचुन प्रकाश है कि हमें तो सुभाष है कि अजब स्वरूप है कि हमें तो बेपूत है कि हमें तो पसा है कि आत्म प्रवाह है कि

करुणालय है और काले है, खलखंडन है, मैं मंडन है, जगदेश्वर है, परमेश्वर है, कलकारण है, सर्वोवारण है, धृत के तन है, जाके कर्ण है, मनमानी है, जगजानी है, सर्वम पर है, सर्वंकर है, सर्वपाश्य।

अकृताकृत है, अमृतामृत है, अमृतामृत है, अम करुणाकृत है, अकृताकृत है, तरणी तृत है, अमतेश्वर है, परमेश्वर है, अकृताकृत है, अमृतामृत है, अजवाकृत है, अमृतामृत है, नरनायक है, खलकायक है, विश्वम्पन है, करुणालय है, नृपनायक है, सर्पायक है, पपंजन है, अर्घंजन है, रिप्तापन है, जप जापन है, अकलंकृत है, सर्वाकृत है, कर्ताकर है, हर्ता हर है, परमात्म है, सर्व आत्म है, आत्मवस है, जस के जस है, भुजंग पर्यात छंद। नमो सूर्य सूर्य, नमो

अतत्तं स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलह कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादम विभूते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आशासे नमो बांक बांके अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी अकामे एक अचरी शांत अजय अलय अभय अभय अपुवज वनास अकाश अगंज पंज अलख अपख अकाल दयाल अलेख अपेख अनाम अकाम अगाह अटाह अनाथ अप्रमाथ अजोनी अमोनी नरागे नरंगे नरूपे नरेखे अकर्म अपरमंग अगंजे अलेखे पुजंग प्रयात छंद नमस्तुल प्रणाम्य सुमस्तुल प्रणासे अगंजुल अनाम्य सुमस्तुल निवासे नृकाम विभूते सुमस्तुल

आप अपनी बुद्ध है देती बन पिन पिन तो है तेती तुमरा लखा न जाए पसारा के बद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंग पहु राव कहीं पूपा अंडज जीर जसेत जकीनी उत्पुज खान बहोर राच दीनी कहूं फूल राजा हुए बैठा कहूं सिमट पहु शंकर अकैठा सिगरी सृष्ट दिखाए अचंपव या जुगा स्वरूप सुयंपव

बचाई, कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूर्ण सुमराता, किन्मिक सकल देह को हरता, दुष्ट दोखियन को शय करता।

पड़ेल। सुने गुंग जो याहि सुरस न पावई, सुने मूड़ चितलाए चतुरता आवई, दुख दर्द पाव निक न तिन नर के रह, हो जो या की एक बार चौपाई को कह। चौपाई संबत 17 सहस पण जय अर्थ सहस पण तीन कह जय भाद्रव सुदी अष्टमी।

जे को सिख गुरु सेती सन्मुख होवै हुवै तां सन्मुख सिख कोई जीव रहै गुरु नाले गुर के चरण हिरदय त्याए अंतरयात्मै समाले आप छड सदा रहे परने गुर बिने अवर न जाने कोए कह नानक सुनो संत हो सो सिख सन्मुख होए।

जैसी अग्नि उदर में है तैसी बाहर माया, माया अग्न सभी को जेही करते खेल रचाया। जाओ तिस पहाड़ा ता जम्मिया परिवार भला पाया, लिव छुड़की लगी।

बिन सतगुरु के नाना पाया, बिन सतगुरु के नाना पाया, सतगुरु चाप रखे कर प्रगटाक सुनाया, सतगुरु मिले सदा मुक्त जिन विचों मो चुकाया, उत्तम विचार जिन सच्चे स्यों चित लाया।

मोरख पंडित हिकमत जत संज्ञा करें प्यार, धर्मी धर्म करें गवावे मंगै मुख द्वार, जति सदा वे जुगत न जाने छड़ वह करवा, सब को पूरा आपे होवे घट न कोई आखे, पत प्रवाणा पीछे पाई है।

जिन कर उपदेश ज्ञानन जिन दिया ने नेत्र जगत ने हालिया कसम छोड़ दी लगे डूबे सेवन जारिया सतगुरु है बहुत अवले किने विचारिया कर कृपा पार उतारिया कर कृपा पार उतारिया

थोड़ी चित्त अंदर सब को गिना दिलेट चलाइंदा आपे देवड़िया यहाँ पे कर्म कराइंदा वड्डो वड्डा वड मेदनी सिरे सिर तिन दिलाइंदा नदर पट्टी जे कर सुल्ताना।

पर्वत स्नागल जब दुना खाए खसम है करे बराबर फिर गर तंद्र पाए बजोगा अगला मैं पाना खाए जिसदा दिता खाना तिसकी ऐसा बास नानक कम ने चले नाल कसम चले अरदास नाल कसम चले।